0: आप ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: आंखों में आंसू को गिरने न दिया, मिट्टी पे मोतियों को बिखरने न दिया, जिस राह पर पड़े थे तेरे कदमों के निशान, उस राह से हमने किसी को गुजरने न दिया। जी हाँ, दिस लव इज मैजिकल और अक्सर प्यार के इजहार में एक अहम जरिया है आंखें, जो बिन बोले बहुत कुछ बोल जाती हैं। वो आंखें जिन्हें हम खामोश अल्फाज कह दें, एहसास कह दें तो गलत ना होगा।

0: वो बहती नदी सी है और रुका हुआ हूँ मैं, अब उसके आगे कोई वजूद नहीं मेरा, खजाने सी है वो और लूटा हुआ हूँ।
1: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
2: चाहे अपनों का साथ मिले या ना मिले, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो उनके लिए दुआ दुआ और सिर्फ दुआ मन से निकलती है। मेरा लव्स लव्स दुआ दुआ, मेरी आंखों से धुला हुआ, तुझे जिंदगी की वो सहर मिले, तुझे मोहब्बतों का सफर मिले, तुझे दर्द और गम ना कभी छू सके, तेरी आंख कभी न नम हो सके, तेरा प्यार जिस पे निसार हो वो हमेशा तेरे पास हो, ये दुआ हो कोई गिला नहीं, तुझे जिंदगी में वो सुकून मिले जो किसी और को कभी मिला नहीं।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: मुस्कुराहटों का मतलब ये कतई नहीं है कि आप आंसुओं को भूल जाएं, क्योंकि ये मुस्कुराहटों की तरह सिर्फ सुख में ही हमारे पास नहीं आते, गम में भी पूरा साथ निभाते हैं। दुख की घड़ी में आए तो दिल का बोझ हल्का कर जाते हैं और खुशी के मौके पर भी बस ऐसे ही निकल आते हैं। फिर हम इन्हें मुस्कुराहटों से कम क्यों समझें, क्योंकि ये तो ऐसी सौगात है जो बिन मांगे ही हमें मिल जाते हैं।

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। कोशिश करें और खुद को गार्बेज बॉक्स न बनने दें, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई इंसान किसी को माफ नहीं कर पाता या करना नहीं चाहता तो वो एक्चुअली खुद को एक कमरे में बंद कर रहा है जहां बहुत अंधेरा है। पर एक दिन तो उसको वहां से बाहर निकलना होगा ना, इसलिए जब हम मन में इतने ग्रजेस, नफरत और रिजेंटमेंट पालते हैं तो हम किसी और को नहीं खुद को सबसे ज्यादा हर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मन में सबको पता है, बट थ्योरी इतनी अच्छे से पता होने के बावजूद प्रैक्टिकली हम नहीं जी पाते हैं।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: हम लोग अक्सर खुद को बहुत सुपीरियर मानते हैं और दया की नज़र से देखते हैं स्पेशल चिल्ड्रेन और मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को, पर कहीं ना कहीं वो लोग वो बच्चे हमसे बहुत आगे हैं ह्यूमैनिटी में, इक्वालिटी में। पता है कैसे? क्योंकि हमारे पास ब्रेन है जो हर काम में लॉजिक ढूंढता है, जो हमारे दिल को सोचने की इजाजत नहीं देता।

0: कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज।
1: अच्छा विजुलाइज करें, सन 2006 की ये बात है। 8 बच्चे एक ट्रैक पर एक लाइन में खड़े थे, भागने के लिए बिल्कुल तैयार। रेडी स्टेडी एंड गो, टॉय पिस्टल की साउंड हुई और आठों लड़कियां भाग पड़ी। अभी 10-15 कदम की दौड़ी होंगी कि उनमें से सबसे जो छोटी लड़की थी वो गिर पड़ी, चोट लगी, दर्द की वजह से रोने लगी। बाकी 7 लड़कियां रुक गई, मुड़कर देखा और उस रोती हुई छोटी सी लड़की की तरफ वापस भागी। 7 ने उसे प्यार किया, चुप कराया और फिर एक दूसरे का हाथ थामकर इकट्ठी भागी और पहुंच गई विनिंग पोस्ट पर एक साथ। ऑफिशियल्स हैरान थे, हजारों स्पेक्टेटर्स हैरान थे, करीबन सबकी आंखें नम थी एंड विद दैट केम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। अब बताएं, है कोई शक कि है ये हम सबसे स्मार्ट और प्योर हर एंगल हर एस्पेक्ट से।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे YouTube चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: अच्छा सभी सोच कर देखें कि आज से सालों बाद जब वक्त हाथ से निकल जाएगा तो श्योर है कि आपके पास एक लिस्ट तैयार होगी उन कामों की, उन वर्क्स की जो इन बीते 20 सालों में आप कर सकते थे पर कर नहीं पाए। इसलिए आए तो कैन जस्ट एडवाइस कि इतनी सेफ गेम खेलनी छोड़ दें एंड जस्ट एक्सप्लोर, ड्रीम एंड डिस्कवर, एम हाई, शूट फॉर द मून। नहीं भी हाथ में आया तो डजंट मैटर, तारे तो कहीं नहीं गए ना।

0: पंजाबी चुटकले कहानियां ते साडियां चटपटियां गल्लां
1: आहो सुनदे यार रोज रेडियो ते
2: सुनो साडे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ पंजाब ते।
3: रात को चांद तारों से बातें मत किया करो, कोई तबीयत के बारे में पूछे तो मौसम के बारे में मत बताया करो, वरना लोग कहेंगे कि तुम बहुत उदास हो। जी हाँ, ये सिम्टम्स यकीनन उदासी के हैं, मैं आपको बता दूँ, ये तो मैंने सिर्फ कहने को ही कहा था, मैं बिल्कुल उदास नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आपसे बात जो कर रही हूँ। चलिए खुशी में इजाफा करती हैं और लिए चलती हूँ आपको एक और ट्रैक की तरफ। आप सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਆਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: चले एक छोटी सी पहेली के बारे में बात करती हूँ। एक छोटा सा सपना था, उस सपने में कोई अपना था, उस सपने में कुछ सुकून था जो जिंदगी का जुनून था, उस जुनून में एक राहत थी जो सिर्फ तेरी चाहत थी, उस चाहत में एक अंदाज था जो मेरी धड़कनों का राज था, उस राज में एक खुशबू थी जो मेरी सोच की जुस्तजू थी, उस जुस्तजू में एक एहसास था जो हमेशा मेरे पास था, उसके पास होने में एक आराम था। अब सोचें क्या था वो, मैं बताऊं, वो बस सिर्फ एक तेरा नाम था।